आकाशवाणी एफएम बठिंडा एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते स्टूडियो दी कड़ी ते सवेर दे 5:53 ते 29 सैकेंड हो रहे ने। अज दिन वीरवार शक संवत 1948 दे वसाख महीने दी 30 तारीख अते ईस्वी सन 2026 ते मई महीने दी 21 तारीख है। स्टूडियो दी कड़ी ते समा 5:45 दा हुण साडी अज दी प्रसारण सभा शुरू हुंदी है ते साडी अज दी प्रसारण सभा दे विच साडे सारे ही श्रोतियां दा स्वागत है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समा। हूं तो थोड़ी देर बाद ठीक 6:15 ते सरवण करोंगे प्रोग्राम अमृत वेला। 7 बजे का समा होएगा प्रोग्राम सजरी सवेर का। आज के प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान तुसी सुनोगे हफ्तावारी सिलसिला शुरलियां। इस विच भाग लैण वाले कलाकार बबली का किरदार निभाया ममता अरोड़ा ने, डॉली का सीमा मेहरा ने, बीबू बुआ का संदीप शेरगिल। हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन होएगा सवेरे 8 बजे। 8:15 ते अंग्रेजी दे विच खबरां दा बुलेटिन जो कि रिले करांगे आकाशवाणी दिल्ली तों, अते 8:30 बजे खबरां होणगियां पंजाबी दे विच जो कि रिले कीतियां जाणगियां आकाशवाणी जलंधर तों। 8:40 ते प्रोग्राम महक पंजाब दी, जिस विच तुसी सुनोगे सूफियाना संगीत। 9 बजे विविध भारती मुंबई दे प्रसारण सुन सकते हो, जिस दे तहत सवेरे 9 बजे सुनोगे चित्रलोक, 9:30 बजे आज के फनकार।

आकाशवाणी FM बठिंडा 101.1 MHz ते इस वेले तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 प्राप्त की जा सकती है।

0: फायदा पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: कार तो काम करो, वादू तनखा बस एक क्लिक ते, वाजी वाह।
3: फसी
4: अनजान लिंक कांते क्लिक ना करो। आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनो, सुचेत रहो।
6: पेश है सबका फेवरेट
7: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।

0: आलो आलो ए शरबत।
1: दी बाकड़े ता बड़ा ही रंग बिरंगा जा कुड़े, मैं ता पहली बारी देखिया कुड़े। माड़ा जा ऐ दा दस दे आ चमचा जा हला के भी एदे विच पाया की कोसा।
0: पी के दसो, गैस करो की है।
1: नी लापीन बड़ा कुड़े आ चमचा तेरा मेनू लगदा ऐ आ भी काजू बादाम कड के खान वास्ते हना, ते आ ले भाई मैं पी के दिखाउनी आ तेनू। नी ओहो कुड़िया की अग सुबह फड़ाता, नी एच ता कुछ ही नहीं हैगा, ना लून ना मिठा ना खट्टा, नी ये है की मेरे चाक के मथे मारिया। नी ओहो भाई ये तो बड़ा ही कम गलत करता, मेरा तो बक बका जा मुंह हो गया। नी कुड़िया तू पानी दा गिलास दे दे, कोई कुरली करली करा दे मेनू।
0: हैं पसंद नहीं आया थोनू, मैं तो 2 घंटे लग गए बनाने लगे।
1: नी बस तू आप दे घंटे ही गिनी चली, कुड़े ए च कोई चंगू चीज ता पा लैंदी। ए ता मैनू ऐ लगदा जिवें अक दे पत्ते तोड़ के पाए हुंदे आ, नी जिवें रेगिस्तान दे कौड़ तुंबे प्याते हुंदे आ। कुड़े कोई चज दा बदला लै लैंदी जे बदला ही लैणा सी। नी मैं ता तैनू पहला ही आख्या सी वी मेरा ब्लड वधदा, कुड़े तू ता होर बधाएगी। मैनू नी लगदा भी अज मैं घरे भी पहुंचूंगी। नी जा हुण पानी लिया दे के मुंह बना के देखी जाएगी।
0: ओहो लेके आई मैं, आलो आलो पानी पियो।
1: नी वो मैं मच जा कुड़े, इन्ना तत्ता पानी कुड़े, ठंडा पानी लिया दिंदी।
0: तुसी भी कमाल कर रहे बीबोसेस, तुसी किड़े पानी पीना, तुसी कुड़ली करनी है, एवे पानी वेस्ट करा मैं। सवेर दे 3 डोंगे बर्फ दे लग गए साडे घरे।
1: ते आहो मैनू लियाता टैंकी चो उबलदा होया तत्ता तत्ता पानी, भी आपे मुंह मचा लूगी। कुड़े आज ता तू पिछले जन्म दा कोई बदला ले रही है डोलिए बदला।
0: बीबोसेस मैं यूट्यूब लगाया, यूट्यूब च मैं इन्ना सोना शरबत कहते पी के देखो बहुत स्वाद बनता। ते मैं ता सारा समान तैयार कर लिया करके मैं थोड़ी देर मैं कह चल मैं हवा ले आवा। आके जो मैं वीडियो ऑन की ते मैंने लगता फिर वीडियो ऊपर नीचे होगी, कुछ होर बन गया होना है। ते चलो कोई नहीं, गलती हो जाती है इंसान तो।
1: नहीं आहो कुड़े मैनू लगदा बंदियां आले काड़े तो बाद तू किते काड़ा देख लिया होना जेड़ा पशुआं नू पाई दा। कुड़े मैनू लगदा दोहां चीजां दा रल गड करके पियाता मैनू।
0: बीबोसिस तुसी केड़ा सारा पीता है, एक कोटी पीती है, तो ये सोचो तुसी किन्नी भलाई दा काम करता। तुसी पी लिया सानू पता लग गया बकबका बनिया, हुण मैं किसे नूं देना घर दे विच। जे मैं घरे दे दिंदी सस

0: मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है।
1: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना मिति 21 मई दिन वीरवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम गल्लां चो गल तहत तुसी सुनोगे सिलसिला हेलो डॉक्टर जिस दा विषय रहेगा जूनोटिक बीमारियां की हन इन्ना तो किवें बचिए इस संबंधी जानकारी देंगे एम्स बठिंडा विखे सेवावां निभा रहे डॉक्टर गुरसिमरन कौर कोचर जिन्हां भी स्रोतियां ने इस विषय संबंधी कोई भी जानकारी लेनी होवे ओहो स्टूडियो दा फोन नंबर 0164-2240-331 मिला सकदे ने ते प्रोग्राम दे विच हिस्सा ले सकदे ने। सो सुनना ना भुलना मिति 21 मई दिन वीरवार शाम 5:30 बजे सिलसिला हेलो डॉक्टर।
2: FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ 22 ਮਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ

जी बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा गीत एक चाय। चाय दा अपना ही महत्व हुंदा जी। डिपेंड करदा है कि तुसी किदी संगती दे विच चाह दा कप शेयर कर रहे हो, है ना। दोस्त दे नाल कर रहे हो तो उही चाह ताजगी दे जाएगी। जेकर ऑफिस दे विच काम कर रहे हो तो चाह दा कप आ गया तो फिर वो चाह जिहड़ी है काम दे विच होर रवानगी पैदा करेगी। सो चाह दा कप वाकई बड़ा महत्व है। हुण इन्नी ज़्यादा चाह होगी, मैनूं लगदा है एक कप चाह तो तुहानूं भी पी ही लेनी चाहिए है। तो अज असीं गल कीती जी 21 मई नूं इंटरनेशनल टी डे की। अगली असी गल करते हैं जी 21 मई है अज ते अज दा दिन गल करिए जी सभ्याचारक विभिन्नता संवाद ते विकास दिवस दे तौर ते भी मनाया जाता है। 21 मई नूं खास दिनां दे विच असी गल करांगे सभ्याचारक विभिन्नता संवाद ते विकास दिवस बारे। यह दिवस दुनिया के वख वख सभ्याचारां भाषावां ते परंपरावां नूं सन्मान देने लई आपसी प्यार ते भाईचारे नूं वधाउण दा संदेश दिंदा है। यह दिवस यूनाइटेड नेशन वालों मनाया जाता है ता जो लोगों विचकार एकता समझ अते सांझ भी मजबूत किया जा सके। साड़ी दुनिया विच वक वक रंग अते यह दुनिया वक वक रंगा अते सभ्यता दे नाल भरी हुई है। हर सभ्याचारक की अपनी खूबसूरती अपनी बोली अपने रिवाज अते अपनी पहचान होंदी है। यह विभिन्नता ही साड़ी दुनिया नूं होर खूबसूरत बनाउंदी है। दोस्तों अज असी एक दूजे दी परंपरावां अते सभ्याचारां दा सत्कार करदे हां प्यार ਅਤੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਇਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦਾ।

लो जी, फिर चलते चलते बस इतना पैगाम सा देंगे, हर खूबसूरत पल को आपकी याद देंगे, एक मुलाकात होगी मुस्कुराते हुए, तब तक के लिए अलविदा कह जाएंगे। जी हाँ, इस दिन प्रोग्राम सजरी से फिर रहते खत्म होता है। प्रोग्राम के निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी।

0: ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, 8:15 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, 8:30 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में

0: औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और बीएसएफ द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
2: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी। प्रियंका
0: जी, जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
3: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़,

0: तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including

0: और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: उन्होंने कहा कि दोवे तिरा भारत इटली इनोवेशन सेंटर कायम करने लिए काम कर रही ने। श्री मोदी ने भी कहा कि भारत इटली रक्षा सनती खाके ने रक्षा खेतर भी सांझे विकास से उत्पादन लिए नवे राह खोले ने। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री शक्तियां वजो जहाजरानी बंदर का आधुनिकीकरण लॉजिस्टिक्स और नीली आर्थिकता भी सहयोग का पसार करेंगे। आलमी चुनौतियां का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दोवे देश यूक्रेन पश्चिमी एशिया ते होर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों ते निरंतर संपर्क विच ने। श्री मोदी ने दोहराया कि गलबात ते कूटनीति ही अगे वधण दा इक्को इक राह ने। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक भाईवाली भारत इटली संबंधा की वधदी डूंघाई नूं दर्शाउंदी है जो आपसी विश्वास अते सांझियां कवतरा कीमतां ते आधारित है। उन्होंने कहा कि दोवे देश अत आधुनिक निर्माण बुनियादी ढांचे ऊर्जा पुलाड़ आर्थिक रक्षा विच तेजी नाल तरक्की कर रहे ने। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वह भारत विच अपने साथियों नाल अमरीका की 250वीं वरेगंढ मनाने की तांग रखते ने। अपनी यात्रा तो पहला सांझे किए एक वीडियो संदेश विच श्री रूबियो ने कहा कि भारत दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्र है और अमरीका दुनिया का सब तो पुराना लोकतंत्र है, इसलिए अमरीका इसनों इकट्ठा मनाने की तांग रखता है। भारत विच अमरीकी दूतकार ने भी यह वीडियो साझा किया है। अमरीका 4 जुलाई को आजादी के ऐलाननामे से दस्तखत करने की 250वीं वरेगंढ मनाएगा। श्री रूबियो इस महीने की 23 तारीख तो भारत के 4 दिन दौरे से होंगे। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा गूगल और टैलीग्राम समेत प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मा के प्रतिनिधियों नाल एक मीटिंग की थी, जिस विच खास करके टैलीग्राम चैनलों और अज्ञात ऑनलाइन समूहों राही मुकाबले दिया परीक्षावां नाल संबंधित गलत जानकारी के वधरे फैला से गंभीर चिंतावां जाहिर कीतियां गईयां। यह मीटिंग 21 जून को नीट यूजी 2026 की मुड़ परीक्षा तो पहला महत्वपूर्ण सी। अधिकारियों ने कहा कि कई अजिहे चैनल वड्डियां परीक्षावां तो पहला बहुत ज्यादा सरगर्म हो जाते हैं। जाली पेपर लीक के दावियां क्लिकबेट समगरी से गैर प्रमाणित जानकारी नूं प्रसारित करते हैं, जिस नाल विद्यार्थियों ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਲਝਣ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੈ ਚਾਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। एक होर मीटिंग में सिक्ख्या मंत्री ने नीट यूजी मुड़ परीक्षा के सुरक्षित और निरपक्ष संचालन को यकीनी बनाने लिए उच्च चौकसी और बेदाग सुरक्षा प्रबंधों की जरूरत पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद ते कड्याली तार की वाड़ लई सरहदी सुरक्षा बल BSF नूं जमीन सौंपनी शुरू कर दिती है। कल रात सकत्तरेत नवन्ना विखे मुख्यमंत्री सुबेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी विच रस्मी तौर ते इस अमल की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार ते असहयोग राही सरहदी सुरक्षा विच रुकावट पाउण दा इल्जाम लाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरहद ते वाड़ लाउणा राष्ट्रीय ते राज सुरक्षा लई बेहद जरूरी है। उन्होंने घुसपैठ तस्कर नकली करंसी जबरदस्ती धर्म बदलन अते गैर कानूनी बांग्लादेशियां दे प्रवेश करन वालियां संबंधी अपराधां वर्गे मुद्दियां दा हवाला दिता। पश्चिम बंगाल 4000 किलोमीटर भारत बांग्लादेश सरहद विचों करीब 2200 किलोमीटर सांझी करता है। कल दे जमीन सौंपण दे अमल विच 27 किलोमीटर लई जमीन शामिल है, जिस विचों 18 किलोमीटर वाड़ लई अते 9 किलोमीटर BSF चौकियां ते बुनियादी ढांचे लई है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिता कि होर जमीन जल्द ही तब्दील कर दी जाएगी, जिसकी लागत केंद्र सरकार ते BSF वालों पूरी तरह कवर की जाएगी। पश्चिम बंगाल विच दक्षिणी 24 परगना जिले के फालता विधानसभा हल्के लिए दोबारा वोटिंग शुरू हो गई है। सवेरे 7 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे खत्म होगी। चोन कमिशन ने फालता विधानसभा हल्के विच पूरी तरह दोबारा वोटिंग का आदेश दिता सी, जिस विच 29 अप्रैल नूं वोटरां नूं डराउण धमकाउण वोट केंद्रां दे अंदर अनअधिकृत मौजूदगी अते वोटिंग मशीनां नाल संभावित छेड़छाड़ समेत बेनेमियां दीआं शिकायतां तों बाद 29 अप्रैल नूं हुई वोटिंग नूं रद्द कर दिता गया सी। कुल 6 उम्मीदवार चोन मैदान विच ने, जिन्हां विच 2 आजाद उम्मीदवार आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसिल UNSC विच पाकिस्तान दे नसलकुशी दे इतिहास की नखेधी की है। कल हथियारबंद टकराव विच नागरिकां दी सुरक्षा विषय ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसिल दी सालाना खुली बहस विच बोलदिआं संयुक्त राष्ट्र विच भारत दे स्थाई राजदूत हरीश

जी वेला हो रहा है प्रोग्राम महक पंजाब दी। आज दे प्रोग्राम महक पंजाब दे विच साडे सारे ही श्रोतियां दा स्वागत है। आज तुसी इस प्रोग्राम दे विच सुनोगे सिलसिला सूफियाना संगीत। पेश करांगे श्रोतियां दी नज़र सूफियाना संगीत ते खूबसूरत जे गीत। सो प्रोग्राम दा आगाज़ वडाली ब्रदर दी आवाज़ दे विच इस सूफियाना संगीत दे नाल।

कहते इश्क वो नहीं जो लफ्जों में बयां हो जाए, सूफी इश्क तो वो है जो रूह में उतर जाए। जिसे ढूंढते रहे दुनिया की भीड़ में, वो सुकून मिला तो तेरे नाम से मेरे ए खुदा। जी इस नाल ही ऐसे प्रोग्राम महक पंजाबी दे तहत सिलसिला सूफिया संगीत ते खत्म होंदा है। आकाशवाणी एफ एम बठिंडा एफ एम बैंड 101.1 MHz ते स्टूडियो की कड़ी ते समा सवेर दे 8:59 ते 26 सैकेंड का हो रहा है। वेला हो रहा है विविध भारती मोबाइल के प्रसारण का। ठीक 9 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम चित्रलोक, 9:30 बजे आज के फनकार विविध भारती मुंबई के प्रसारणा के नाल।

दर्शन रावल और जोनिता गांधी की आवाजों में धड़क टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गुरुप्रीत सैनी ने इस गीत को लिखा था और रोचक कोहली और साथियों ने इस गीत को संगीत से संवारा था। इसी गीत के बाद आइए एक बहुत छोटा सा ब्रेक फिर से लिया जाए और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।

दोस्तों, आज जन्मदिन है प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार और सफल फिल्में दी हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी जैसे सफल फिल्मों का निर्देशन किया। इसके अलावा उन्होंने वीर ज़ारा, धूम, श्रृंखला, चक दे इंडिया, एक था टाइगर और बंटी बब्बी जैसे फिल्मों का लेखन और निर्माण किया। सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा को विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा पर, और सुनते हैं आप ये गीत। आपको ये भी याद दिला दें कि ये आज के फनकार कार्यक्रम सुनेगा सुबह और रात 9:30 पर।

0: रब ने बना दी जोड़ी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजें थी, जयदीप साहनी के बोल थे और सलीम सुलेमान की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती।

ऋत्विक तलाशिलकर और साथियों की आवाजों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और संजय लीला भंसाली ने इस गीत को संगीत से सजाया। एक और ब्रेक लेते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

वीर ज़ारा फिल्म का गीत उदित नारायण के आवाज में आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर के ये बोल थे। दोस्तों, आज विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस है। दुनिया में हर जगह लोगों की भाषा बोली अलग है, खान पान पहनावा सब अलग है, उत्सव अलग ढंग से मनाए जाते हैं। हर जगह की संस्कृति और सभ्यता अलग होते हुए भी इन सब के बीच एक बात है जो सबको जोड़ती है, वो है इंसानियत और प्रेम। सब कुछ अलग होते हुए भी एक दूसरे को समझने की भावना, यही सुंदरता है। हमारा देश तो विविधताओं का अनुपम और अद्भुत संगम है। संग अच्छत्वम संग वदत्वम सम वो मनांसि जानताम। साथ चलें, साथ बोलें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, मन को समझें और मिलकर आगे बढ़ें। विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान, सद्भाव और आपसी संवाद को बढ़ावा देना है।

के लिए यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था मेरी बाप पहले आप। दोस्तों आज आतंकवाद विरोध दिवस भी है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाने का उद्देश्य कि हमें एकता भाईचारा और आपसी विश्वास को मजबूत करने की प्रेरणा ये देता है। आज का दिन आइए हम सभी मिलकर हिंसा और नफरत से दूर रहकर प्रेम सद्भाव और शांति का संदेश फैलाएं, क्योंकि जब समाज और देश सुरक्षित रहता है तो हम सुरक्षित रहते हैं। और अब एक संदेश।
1: एक

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ और समृद्ध रहिए। और इजाजत दीजिए सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम से। नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज की फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटाके एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।

0: अनकही अनसुनी आरजू, आधी सोई हुई आधी जागी हुई, आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी, जैसे हर पल नई और फिर भी वही, हाँ वही जिंदगी, जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है, पास आना भी है दूर जाना भी है, और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है, ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है, और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
1: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही उम्र का मोहताज होता है, प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।
2: Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats, yeah, Bunty or Bubbly, coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, them gonna pass the test.
0: ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: शादी।
1: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की, कबीर खान निर्देशित एक था।

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थीं रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्रे।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाते हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: आप सुन रहे हैं।

जी श्रोतियों, प्रोग्राम गीत पिटारा सुन रहे तमाम श्रोतियों मेरे वालों यानी कि विजयलक्ष्मी वालों प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब ते गुड मॉर्निंग। अज दे प्रोग्राम गीत पिटारा दे तहत श्रोतियों दी नज़र करांगे असी सदाबहार हिंदी फिल्मी गीत। सो प्रोग्राम दा आगाज करदे हां एक बड़े ही प्यारे खूबसूरत जे गीत दे नाल, जिस नूं आवाज़ दित्ती है लता मंगेशकर ते नितिन मुकेश ने। फिल्म है आईना।

प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना मिति 21 मई दिन वीरवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम गल्लां चो गल तहत तुसी सुनोगे सिलसिला हेलो डॉक्टर जिस दा विषय रहेगा जूनोटिक बीमारियां की हन इन्हां तो किवें बचिए इस संबंधी जानकारी देंगे एम्स बठिंडा विखे सेवावां निभा रहे डॉक्टर गुरसिमरन कौर कोचर जिन्हां भी स्रोतियां ने इस विशेष

प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना अज दोपहर 12:10 ते तुसी सुनोगे एक विशेष प्रोग्राम जिस विच डॉक्टर उषा गोयल जिला सेहत अफसर श्रोतिया नूं जानकारी देंगे लू लगण तो किवें बचिया जा सकदा। उन्हां नाल गलबात करनगे मनदीप रजौरा। सो सुनना ना भुलना अज दोपहर 12:10 ते यह विशेष प्रोग्राम। स्टूडियो की घड़ी से समा सवेर के 10:45 से 26 सैकेंड हो रहे हैं। आओ सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, आवाज लता मंगेशकर ते एस पी बाला सुब्रमण्यम दी। फिल्म है वंश और इस गीत दे बोल लिखे ने जी समीर ते संगीत आनंद मिलन दा।

प्रोग्राम गीत पिटारा चल रहा है और विजयलक्ष्मी तुहाडे नाल प्रोग्राम दे विच गीत और संगीत तुहाडी नजर कर रही है। आओ सुनदे लता मंगेशकर की आवाज दे विच फिल्म सौतन दा गीत, गीत दे बोलके ने सावन कुमार दे और संगीत उषा खन्ना दा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान

हमको रिव्यूज कैसे मिलते हैं, अगर रिव्यूज अच्छे मिले तो ये कलेक्शन बढ़ सकता है, वहीं अगर खराब रिव्यूज मिले तो ये कलेक्शन जो है ये थोड़ा कम भी हो सकता है। वीकेंड पर भी फिल्म को अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2026 की टॉप रोमांटिक ओपनर बन सकती है ये फिल्म, क्योंकि इसको लेकर जैसा मैंने जिक्र किया काफी बज है। नई जोड़ी एक पर्दे पर देखने को मिल रही है, अनन्या पांडे और लक्ष्य पहले कभी साथ में नजर नहीं आए हैं। लक्ष्य की एक्टिंग की तारीफ लंबे समय से रही है और इस ट्रेलर में अनन्या पांडे की एक्टिंग भी अच्छी बताई जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। ओपनिंग डे पर टिकट को लेकर भी मेकर्स की तरफ से काफी डिस्काउंट दिया गया है और इस डिस्काउंट का फायदा भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है कि इस डिस्काउंट की वजह से शायद जो ऑडियंस है वो थिएटर्स की तरफ खिंची चली आएगी और फिल्म को शानदार ओपनिंग मिल पाएगी। देखना होगा अनन्या पांडे और लक्ष्य स्टारर ये फिल्म कितनी कमाई करती है पहले दिन, लेकिन हाँ ये जरूर है कि फिल्म से उम्मीदें काफी हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दीपिका के साथ हैं आप, प्रोग्राम सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। वेल, एक तरफ जहां आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स के सीक्वल का फैंस को इंतजार है, सीक्वल पर काम चल रहा है ये आमिर खान बता चुके हैं, और ऐसे में इस सुपरहिट फिल्म के सीक्वल का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ कुछ वक्त पहले आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म एक दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। जुनैद खान और साई पल्लवी स्टारर इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत बेकार रिस्पांस मिला था। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी जिससे आमिर खान का दिल टूट गया। इस बारे में हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बात की है और बताया है कि उन्हें कितना खराब लगा जब उनके बेटे की फिल्म जो है ये फ्लॉप हुई। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद काफी वक्त तक वो डिप्रेशन में थे और उन्हें बहुत बुरा लगा था। दरअसल ये फिल्म आमिर खान की प्रोडक्शन में बनी थी, जुनैद खान की फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 25 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया था। बिल्कुल भी इस फिल्म को रिव्यूज कहें या फिर ऑडियंस कहें, कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिला था। आमिर खान ने एक लीडिंग मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि जब दर्शक किसी फिल्म को नकार देते हैं उनकी, तो उन्हें ये बात बहुत पर्सनल लगती है, क्योंकि वो हर फिल्म को अपने बच्चे की तरह पालते पोसते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वो इमोशनल लेवल पर ये बातें कह रहे हैं, बाकी वो समझते हैं कि दर्शकों पर ही डिपेंड करता है कि वो फिल्म को किस तरीके से लेते हैं। लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि उन्हें इस बात का काफी बुरा लगा था। आमिर ने ये भी कहा कि वो समझते हैं इस बात को कि लोग टिकट खरीदकर थिएटर्स में फिल्म इस उम्मीद से देखने जाते हैं कि उनका मनोरंजन होगा, उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन जब उन्हें फिल्म पसंद नहीं आती तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी तरफ से काम में कोई कमी रह गई है, और दर्शक कभी कभी सोच समझ कर कोई खराब फिल्म देखने नहीं जाते। अगर वो निराश होकर लौट रहे हैं तो इसमें हमारी ही गलती है। चलिए फिलहाल आमिर खान की फिल्म से ही एक ट्रैक यहाँ पर प्ले कर रहे हो, एंजॉय कीजिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी FM रेनबो पर दीपिका के साथ हैं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ बने हुए हैं. प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं बॉलीवुड रील्स. जी हां, बॉलीवुड की अपडेट से लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ खास हो रहा है बॉलीवुड के गलियारों में. फिलहाल एक वीडियो पिछले दिनों कल परसों में बहुत वायरल हुआ था, जहां सलमान खान जो है वो एक हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे और यहां वो अचानक पेपराजी पर भड़क गए थे. काफी कुछ हुआ था यहां पर. कहा गया था कि सलमान खान बहुत भड़के थे और ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. दरअसल पेपराजी जो है वो सलमान खान को देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे थे. फोटोग्राफर्स ने उन्हें घेर लिया था और उसके बाद उनकी जो आने वाली मूवी है उसे लेकर जोर जोर से वो आवाज लगाने लगे थे. इस बात से सलमान खान भड़क गए थे क्योंकि वहां वो किसी करीबी को देखने के लिए पहुंचे थे और हॉस्पिटल के बाहर इस तरह शोर करना शायद उन्हें पसंद नहीं आया था. इस वीडियो पर सभी ने अपनी अपनी राय दी, जहां कई लोगों ने कहा कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे तो कई लोगों ने कहा कि पेप्स को भी अपनी लिमिट समझनी चाहिए. अब सलमान खान जब दोबारा स्पॉट हुए तो यहां पर पेप्स ने उनसे माफी मांग ली है. जी हां, पेप्स ने सलमान खान से माफी मांगी है और सलमान खान भी अब काफी काम नजर आए और इस दौरान उन्होंने पोज

भी दिए और ऐसा लगा कि उन्होंने पैप्स को जो है वो माफ कर दिया है, क्योंकि उनका ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। जैसा मैंने कहा, सब अलग अलग रिएक्शंस इसे लेकर दे रहे थे।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ हैं। प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, और अब वक्त हो गया है उस सवाल को पूछने का जिसका सही जवाब आपको बना सकता है बॉलीवुड सरताज। जी हां, सवाल है मेरा, आपको मुझे बताना है कि मूवी जिसका जिक्र मैंने किया था चांद मेरा दिल, जो कल रिलीज हो रही है, उसमें लीड जोड़ी कौन सी है, यानी कि कौन से अभिनेता और अभिनेत्री उसमें मुख्य रोल निभा रहे हैं, लीड रोल निभा रहे हैं। इसका जवाब आपको मुझे देना है। सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को यहां पर हम बनाएंगे बॉलीवुड सरताज और करेंगे उससे बात।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पाँच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर

0: जी हाँ बिल्कुल, ये गाना आप सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, लेकिन कुछ देर में, क्योंकि फिलहाल वक्त हो गया है बात करने का उनसे जो बने हैं आज हमारे बॉलीवुड सरताज। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो मैम, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से मैम।
0: ओके पंकज, बहुत बहुत बधाई हो, आप आज बॉलीवुड सरताज बने हैं। अपना नाम बता, नाम तो आप बता चुके, माफ कीजिएगा, एक बार सही जवाब हमारे सारे लिसनर्स को।
1: चांद मेरा दिल के मुख्य किरदार के रूप रोल में है अनन्या पांडे और लक्ष्य अभिनेता।
0: ओके, बिल्कुल सही जवाब है आपका। पसंद करते हैं आप बॉलीवुड फिल्में देखना?
1: फिल्में तो देखता नहीं मैम, ज्यादा अपन कार्यक्रम डेली सुनता मैम।
0: अच्छा, तो रेनबो से जुड़े हैं आप?
1: हाँ, 1.5 साल से मैम, रोज प्रोग्राम सुनती मैम।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो, और यूं ही हमसे जुड़े रहिए, यूं ही हमें प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: तो पंकज यहाँ पर अमरावती महाराष्ट्र से बने हैं बॉलीवुड सरताज, लेकिन और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने सही जवाब लिखकर भेजे थे, तो जाते जाते उनका नाम भी यहाँ पर मैं ले देती हूँ। प्रवीण चौहान ने सही जवाब लिखकर हम तक पहुंचाया था, मध्य प्रदेश से इन्होंने मैसेज किया था। जयंत ने पटना से मैसेज किया था, इन्होंने भी सही जवाब दिया था। आसिफ सैफी ने मेरठ से, दानिश ने खतौली से, और जोया ने ऑस्ट्रेलिया से, कांट से मोहम्मद फुरकान ने, और शांति नगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी ने, इन सभी ने सही जवाब लिखकर भेजा था। और भी बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए हैं, लेकिन या तो उन्होंने आधा जवाब दिया है या गलत जवाब दिया है। सोनिया विहार दिल्ली से कंचन ने भी सही जवाब लिखकर भेजा था। तो बहुत बहुत बधाई जिन सभी दोस्तों ने सही जवाब लिखकर भेजे थे। फिलहाल अभी वक्त हो गया है इस प्रोग्राम में आपसे इजाजत लेने का, लेकिन दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी मैं 1 बजे, सुनवाऊंगी आपको गाने, आपके साथ करूंगी बातें। फिलहाल के लिए यहां आपको देनी होगी दीपिका को इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।

0: ने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थीं। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रोग्राम कार परिवार सुन रहे तमाम श्रोतियों नु प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल ते आदाब। मैं सीमा कटारिया हाजिर हाँ अज का प्रोग्राम घर परिवार लैके। तो हमेशा की तरह आस्ते दुआ करते हाँ कि साढ़े सारे ही स्रोते राजी खुशी ते तंदुरुस्त होंगे। जी स्रोतियों, जिमें कि अजकल मौसम बड़ा गर्मी का चल रहा है तो भज नट का भी है, क्योंकि सानू जिंदगी दे विच सरवाइव करने वास्ते रोज़मर्रा के बहुत सारे काम करने पैंदे ने, पैसा भी कमाना पैंदा है, घर दियां बहुत सारियां जरूरतां भी पूरियां करनियां पैंदियां ने। ते उहदे विच जिहड़ी गल है जिहड़ी सब तो ज़्यादा मिस हो जाती है वह हो जाती है कि साडे कोल अपणियां दे कोल बैठ के अपने मन दियां गल्लां जिहड़ियां फरोलन दा टाइम नहीं मिलता।

0: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना मिति 21 मई दिन वीरवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम गल्लां चो गल तहत तुसी सुनोगे सिलसिला हेलो डॉक्टर जिस दा विषय रहेगा जूनोटिक बीमारियां की हन इन्हां तो किवें बचिए इस संबंधी जानकारी देंगे एम्स बठिंडा विखे सेवावां निभा रहे डॉक्टर गुरसिमरन कौर कोचर जिन्हां भी स्रोतियां ने इस विषय संबंधी कोई भी जानकारी लेनी होवे ओहो स्टूडियो दा फोन नंबर 0164-2240-331 मिला सकदे ने ते प्रोग्राम दे विच हिस्सा ले सकदे ने सो सुनना ना भुलना मिति 21 मई दिन वीरवार शाम 5:30 बजे सिलसिला हेलो डॉक्टर
1: स्रोतो तुहानू जानकारी दे दईए कि 21 मई दिन वीरवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम युववाणी दे तहत विषय रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फायदे अते नुकसान इस विषय ते जानकारी देंगे महाराजा रणजीत सिंह पंजाब स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो कंप्यूटर विभाग दे असिस्टेंट प्रोफेसर मैडम सोनाक्षी सागर मुलाकाती होंगे नितिश कुमार सो सुनना जरूर प्रोग्राम युववाणी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी जानकारी दे उत्ते आधारित होवेगा दिन वीरवार शाम 5:30 बजे
2: पेश है सबका फेवरेट
3: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए
4: FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ 22 ਮਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ

जी श्रोते, स्टूडियो की घड़ी मुताबिक समा है 12:46 ते 53 सेकेंड का। जी ते जारी है प्रोग्राम घर परिवार, ते अज इस प्रोग्राम के तहत सिलसिला है दो गल्लां करिए। असी गल कर रहे हाँ कि तुसी जिंदगी दे विच किस तो प्रेरणा ले या कोई दिल दी है जी गल जिहड़ी तुसी किसी नाल सांझी करना चाहते हो, तो तुसी साडे स्टूडियो का नंबर है जी 0164-2442-331 डायल कर सकते हो, अपनी गल भी कर सकते हो, तो अपनी पसंद का गीत भी सुन सकते हो।

0: जी समा 12:48 ते 58 सेकंड दा ते एक होर श्रोता साडे नाल टेलीफोन लाइन ते जुड़े नहीं करदे उहनां दे नाल गल। हैलो
1: हां जी
0: सत श्री अकाल जी। हैलो
1: हां जी हां जी
0: सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल
0: कौन बोलदे हो?
1: करमजीत कौर जी।
0: अच्छा जी स्वागत है करमजीत जी प्रोग्राम घर परिवार दे तहत। हेलो
1: हां जी
0: हां जी रेडियो दे प्रोग्राम सुनदे हो?
1: हां जी
0: सारे
1: हां जी।
0: अच्छा केड़ा प्रोग्राम वधिया लगदा है?
1: घर परिवार बहुत वधिया लगदा जी।
0: अच्छा घर परिवार है ना आपां गल्लां वी ओह जिहियां करदे हुंने आ जिवें आपां आम जनरल फैमिली दे विच बैठ के करिए है ना।
1: हां जी हां
0: जी जी ते होर कोई गल तुसीं प्रोग्राम दे तहत करना चाहंदे हो?
1: नहीं नहीं जी बहुत वधिया जी प्रोग्राम सुन के बहुत वधिया हुंदा
0: जी। शुक्रिया प्रोग्राम दे तहत गल कीती ते अपनी पसंद भी दस दियो केड़ा गीत सुनोगे?
1: गंदरा किया भाई जी मां मरना देख के
0: जी। मैं मेरे कोल होर कोई गीत है मैं वो सुना दियां।
1: ठीक है जी होर सुना दो कोई।
0: ठीक है जी शुक्रिया प्रोग्राम दे तहत गल करन लई।
1: थैंक यू जी
0: जी।

0: जी दुपट्टे दे विच चाहे सत रंग होण ते चाहे इंद्रधनुष दे सत रंग होण सारे ही चंगे लगदे ने ते इसे तरह जिंदगी दे विच भी बहुत सारे रंग हुंदे ने चंगियाई दे रंग भी हुंदे ने किसी के औगण नूं अणदेखा करन दे रंग भी हुंदे ने कई बारी अपना माड़ा चल के भी दूजे का जिहड़ा चंगा सोचना है ना जां चंगा करना वह भी एक रंग हुंदा है यानी कि इदां दे बहुत सारे रंग ने जिहड़े तुहाडी जिंदगी दे विच लोड़ींदे हुंदे ने एक चंगी जिंदगी जीउण वास्ते ताकि तुसीं खुद भी खुश रह सको ते अपना आला दुआला भी खुश रख सको ते वह मैनूं ऐ लगदा भी चंगी जिंदगी किसी की चंगी प्रेरणा तो ही असीं सानूं मिलदी है ते इदां दी ही गल असीं अज इस प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं कि तुम जिंदगी दे विच की चंगा सीख्या है ना किस तो प्रेरणा ली तो इदा ही एक गल करने वास्ते श्रोता मेरे नाल टेलीफोन लाइन ते जुड़े ने करदे उन्होंने नाल गल हैलो
1: हैलो
0: हाँ जी सत श्री अकाल जी
1: सत श्री अकाल
0: जी अपना नाम भी दस दियो हैलो
1: हैलो
0: हाँ जी अपना नाम भी दस दियो हैलो हैलो
1: हैलो
0: हां जी सत श्री अकाल जी मैं क्या अपना नाम भी दस दियो तुसी पहला ना जे तुहाडे पिछे रेडियो चल रहा है ओनू तुसी तुसी उस रेडियो सेट तो थोड़ी जी दूर होके गल करो शायद किसी कारण जिहड़ा फोन है डिसकनैक्ट हो गया है चलो कोई गल नहीं असी गल कर रहे हाँ जिंदगी दे रंगा बारे यानी कि प्रेरणा बारे सानू कित्थों कोई चंगी प्रेरणा मिली ता इन्हां मैडम ने फोन भी कीता सी ते गल भी कीती सी नाल इन्हां ने अपनी पसंद भी दसी सी इन्हां ने कहा सी कि रणजीत कौर दी आवाज़ दे विच गीत प्ले कर दिओ असी उन्हां दी पसंद दा जिहड़ा गीत है ये प्ले करन लगे

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।

0: स्कीम दे टैली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता ते जागरूकता प्रोग्राम नाल जुड़ो। कानूनी मदद टैली लॉ ते टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 ते वेबसाइट www.tallylaw.in तो प्राप्त की जा सकती है।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
3: समा 1:05 ते 45 सकिंट दा ते असी प्रोग्राम दी समाप्ति वल वध रहे हां। प्रोग्राम घर परिवार ते इक होर श्रोता मेरे नाल टेलीफोन लाइन ते ने करदे आ उहनां दे नाल गल। हैलो
4: हैलो
3: हैलो
4: हांजी मैडम जी, सत श्री अकाल जी।
3: हैलो
4: हांजी मैडम जी, सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल जी, कौन बोलदे हो?
4: अमरजीत कौर बोलदी हां जी, पिंड हरी की कलां तो।
3: अच्छा जी, की गल करोगे प्रोग्राम दे तहत?
4: समर्थन कर दी जो कुछ भी है।

प्रोग्राम हैलो फरमाइश ते तमाम श्रोतियां नूं प्यार भरी नमस्कार सत श्री अकाल ते आदाब। मैं सीमा कटारिया हाजिर हाँ अज का यह प्रोग्राम हैलो फरमाइश लैके। तो प्रोग्राम सुनन वाले सारे ही श्रोतियां नूं दस दिए कि अज का यह प्रोग्राम है जी हैलो फरमाइश के तहत सिलसिला है टैलीफोन मिलाओ जी, यानी कि तुसी साडे स्टूडियो दा नंबर 01642443131 डायल करना है ते अपनी पसंद दा गीत भी तुसी सुन सकते हो जी। ते मैं जदों तक इंतजार करदी हाँ कि कोई श्रोता सानू फोन करे टैलीफोन लाइन ते साडे नाल जुड़े ते असी उदों तक प्रोग्राम दा आगाज करदे हाँ इस गीत नाल।

0: जी श्रोतियो, 1:15 ते प्रोग्राम शुरू होया ते 1:19 होए ने ते एक श्रोता साडे नाल टेलीफोन लाइन ते जुड़ भी चुके ने। देखते हैं जी अज दे इस प्रोग्राम दे तहत नंबर 1 ते केड़े श्रोता ने जिहड़े साडे नाल जुड़े ने ते की ओह साडे नाल गल करदे ने। हैलो हैलो
1: हैलो
0: हां जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: जी स्वागत है प्रोग्राम दे तहत, अपना नाम भी दस दियो।
1: सतीश कुमार बांसल बोलदा जी, पिंड सामतखेड़ा नेड़े मंडी डब वाली तेरी।
0: जी सतीश कुमार जी स्वागत है प्रोग्राम दे तहत।
1: थैंक यू मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: अच्छा जी, ए दस्यो फिर काम कार की करते हो?
1: काम कार है जी, अपनी सामतखेड़ा पिंड विच किराने दी दुकान है जी।
0: अच्छा, ते रेडियो किन्ना क सुनदे हो?
1: रेडियो सारा बठिंडा बहुत सुनी दे जी।
0: अच्छा,
1: ते आपा टेलीविजन ते लाउंदे रेडियो सुनदे जी बठिंडा जी।
0: अच्छा, सारा दिन रेडियो चलता है?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: सारे प्रोग्राम सुनते हो?
1: हाँ जी सारे सुनते हैं जी।
0: चलो चंगी गल है, ते फिर हाँ तुसी श्रोता मंच दे विच सानू खत भी लिख दिया करो।
1: लिख दिया करेंगे जी, फिर मैं जी किसी नू होर भी टाइम दे दिए जी, तां नहीं गल होना जी।
0: नहीं नहीं, श्रोता मंच जेड़ा साडा मंगलवार ते शुक्रवार नू चलदा, ओहदे विच सिर्फ प्रोग्रामा दी प्रेज ही हुंदी है। वी तुहानू पता है वी सारे आर्टिस्ट जेड़े इत्थे बैठे ने किन्नी मेहनत करदे ने, हैना?
1: हाँ जी, इहदी कॉल लाऊंगा जी, फिर मैं कॉल ही लाऊंगा जी।
0: हां जी कॉल ला लियो, आही नंबर हुंदा ते पता की तारीफ नाल ना जिवें ओ बॉडी दे विच ब्लड वध जांदा ना, थोड़ी जी खुशी जी हो जांदी है वी।
1: हां जी हां जी हां जी,
0: काम करदा ते तारीफ ओदी करनी चाहीदी है।
1: नहीं जी, थोड़ा स्टाफ अपना सारे वधिया जी, किसे ने अंदर जो खाई नहीं जी, बहुत वधिया स्टाफ अपना जी।
0: स्टाफ तो वधिया, पर फिर भी तारीफ वाला जेड़ा टॉनिक है ना, विटामिन कह सकदे हो तुसी, ओदी सानू लोड हुंदी है, हैना?
1: हां जी हां जी, इहदी शुक्रवार जरूर लावांगे फोन जी।
0: जी ते गीत वी दस दियो अपनी पसंद दा।
1: पहले मैं जी सफर 1970 दी है जी, गीत दे बोल है जी, जो तुमको हो बसंत वही बात करेंगे
0: जी। ठीक है जी, ए भी फिर वो गीत गल तो ही होगी ना, गीत दे बोल दे मुताबिक भी तारीफ ही तुहाडी करांगे, जो तुसी कहोगे वो सानू सिर वत्ते है ना।
1: हां जी हां जी हां जी।
0: चलो शुक्रिया जी प्रोग्राम दे तहत गल करन लई।
1: थैंक यू मैडम जी, बहुत शुक्रिया
0: जी, वेलकम।

0: है दुनिया इश्क पे जोर नहीं, ये पक्का धागा है ये कच्ची डोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं।
1: वाह वाह वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैसे जिन्नी तुसी अपनी एज दस रहे हो ना, ओदे मुताबिक तुहाडी आवाज अजे बहुत सोहनी पई है।
0: ਵਾਜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ,
1: ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ।
0: ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ
1: ਜੀ।

0: अपना नाम भी दस दियो।
1: हेलो।
0: हेलो, हाँ जी, अपना नाम भी दस दियो। हेलो,
1: हेलो, हाँ जी, सत
0: सत श्री अकाल। मैं पहला भी बोल दीती, दोबारा सत श्री अकाल। मैं क्या अपना नाम भी दस दियो।
1: श्री
0: जी, स्वागत है जी प्रोग्राम के तहत। जी, ते गीत केड़ा सुनोगे?
1: अकाल
0: जी ठीक है जी, थोड़ी पसंद है गीत थोड़े रेडियो सेट पे।
1: जी। शुक्रिया जी।
0: शुक्रिया।

0: जी बिल्कुल, जिहड़ियां घड़ी दियां सूईयां ने ओह वी सानूं बहुत इशारा कर रहियां ने कि हुण जिहड़ा प्रोग्राम समाप्ति दा जिहड़ा समां है बहुत नेड़े है, ते असीं जल्दी नाल इक होर श्रोता नूं टैलीफोन लाइन ते जोड़दे हां, करदे हां उहनां दे नाल गल। हैलो
1: हैलो
2: हैलो,
1: हां जी सत श्री अकाल जी।
2: सत श्री अकाल मैडम, कौन बोल सत श्री अकाल जी।
1: जी कौन बोलदे हो?
2: अरुण शर्मा बोल रहा मैडम, बठिंडा तों जी।
1: जी स्वागत है जी प्रोग्राम दे तहत।
2: सलमान
1: खान दे बहुत वड्डे फैन हो? जी चंगी गल है, शुक्रिया प्रोग्राम दे तहत कॉल करन लई ते तुहाडी पसंद दा गीत तुहाडे रेडियो सेट ते।
2: जी

0: Size internal failures through acts of violence within and beyond its border.
1: It is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
0: In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already secured a place in the playoffs, while Chennai Super Kings will be looking to strengthen their chances for the fourth spot in the points table. Meanwhile, Kolkata Knight Riders kept their playoff hopes alive with a 4-wicket victory over Mumbai Indians at the Eden Gardens in Kolkata last night. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. An orange colour warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन

0: करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: It is ironic that Pakistan with its long time...
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: India has recently launched...
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनरिक मेडिसिन।

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
4: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों।

0: को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ, FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ ਹੈ 2:30 ਤੇ 22 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੀਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ।

प्रोग्राम सुरीली दुपहर सुन रहे तमाम श्रोतियों नूं प्यार भरी नमस्कार ते सत श्री अकाल। मैं सीमा कटारिया फिर तो एक बार हाजिर हाँ अज का यह प्रोग्राम सुरीली दोपहर लैके जी समा सिखर दोपहर टिकी दोपहर का तो ज़्यादातर स्रोते है जोड़े आराम भी फरमा रहे हो गए यानी कि जोड़े दोपहर का समय होंगे जो असी दोपहर के खाने तो बाद थोड़ी जी सुस्ती जी दिखा दें हाँ वो समा है तो नालों नाल सा प्रोग्राम भी सुनना है। असी प्रोग्राम के तहत थोड़े भेजे हुए तमाम खत तो जोड़े वट्सअप मैसेजेस सानू किए ने सारे ही शामिल करांगे। सो शुरू तो लैके अखीर तक तुसी मेरे नाल जुड़े रहना है। प्रोग्राम दे तहत बहुत सारे गीत संगीत भी असी प्ले करांगे, खत भी शामिल करांगे, व्हाट्सएप मैसेजेस भी शामिल करांगे। सो तुसी अपनी बारी दा भी इंतजार यह करना है कि तुहाडा खत है शामिल होया या नहीं होया। सो उहदे लई तुहानू मेरा प्रोग्राम है जिहड़ा शुरू तो लैके अखीर तक सुनना पऊगा, मेरे नाल जुड़े रहना पऊगा। तो हुण असी प्रोग्राम दा आगाज़ फिलहाल इस गीत नाल करते हां।

हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेग विरक, मीका विरक, बहुत बहुत शुक्रिया विरक परिवार का प्रोग्राम के तहत खत लिखन लई। अगला खत भी मेरे को पहुंचे गिदड़बाह पंजाब तो ही, लिखण वाले ने मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल बेबी हिनाशा, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब जी का प्रोग्राम के तहत खत लिखन लई। तो अगला खत पहुंचा है पिंड रायके कला जिला बठिंडा तो, लिखण वाले ने सतपाल सिंह सिद्धू, सुखजीत कौर सिद्धू, प्रदीप सिद्धू, गुरदास सिद्धू, हरप्रीत सिद्धू, इंदरजीत ते मनिंदर सिद्धू, बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम के तहत खत लिखन लई।

प्रोग्राम दे तहत स्रोतियां द्वारा भेजे हुए तमाम खाते व्हाट्सएप मैसेजेस भेजन लई ते उन्हां खतां नूं असीं शामिल कीता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दा। ते इस दे नाल ही मैनूं सीमा कटारिया नूं अज दा प्रोग्राम सुरीली दुपहर इत्थे खत्म करन दी दिओ आग्या। नमस्कार।

0: की सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप?
2: चंचल जी और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
1: भाई देखिए, आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहां अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने,
2: लेकिन इस वजह से वहां पे भी गर्मी होने शुरू हो गई क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
1: लेकिन अपने ही शहर में

0: हैं जहाँ रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर
1: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
0: हाँ,
1: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो
0: और
1: आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं
0: जी,
1: या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
0: और
1: हम तो
0: घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
1: फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है। हर एक को होता है।
0: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई,
1: वो उन्हें बताएं अपना।
0: हाँ,
1: बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
0: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राहीबाई सोमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता है, इनकी सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई,
1: हाँ,
0: चाय दिवस, चाय की चुस्कियां तो लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
1: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50 आप सोच लीजिए के गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय
0: चाय चाहिए,
1: चाय के बिना गुजारा नहीं है।
0: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहाँ एक पांचवी चीज होती है वो चाय होती है, दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियां जो हैं वो अपना
1: है।
0: आलम बांध देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में बात
1: करेंगे, बात करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
0: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
1: जी और बिल्कुल, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
0: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
1: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
0: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
1: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोगों ने इतनी बातें करी, तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राही बाई सोमा पोपड़े की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपरे का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है?
1: तो वो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान असुनपन त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपड़े जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते

0: दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते। लेकिन चौथे साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात यह थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में, जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे, बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था, जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो। और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी, स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल। और वो याद कर, क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो, उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती है कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताजा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या

0: तलकर ताजा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको, के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वास पूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
1: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बावलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
0: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
1: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
0: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है।
1: सच में
0: और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की
1: गर्म
0: प्याली
1: चाय,
0: अगर
1: बिल्कुल
0: मिल जाए
1: चाय मिल जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने
0: जी
1: दिमाग को हम ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं
0: और
1: पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े
1: हाँ
0: थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सरदर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है
1: यानी
0: ना
1: अगर
0: वो
1: कहीं
0: वर्ल्ड
1: गए
0: फेमस
1: आप,
0: है।
1: अगर आप किसी के घर गए चंचल जी, अगर
0: हाँ
1: आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन
0: जी
1: आप घर के उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, पता
0: भाई
1: बस चाय नहीं पिलाई तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: कुछ लोग कहते हैं कि ये एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहां चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं।
1: बिल्कुल
0: और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जब बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती है।
1: सच में बहुत ज्यादा,
0: और
1: बहुत
0: पौराणिक कथाएं हैं ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी ऐसा है ना कि एक प्यारी चाय अगर दोस्तों के साथ हो
0: हाँ
1: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहां लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले
1: हाँ
0: हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: और वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं,
0: जी
1: चलो एक बार और हो जाए एक एक प्याली और हो जाए तो एक

0: चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है,
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा।
0: एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े, सबका हल निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे, तो वो फाइलें निपट जाती है फटाफट।
1: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भीनी भीनी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेलजोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
1: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक गीत भी सुन लेते हैं।

0: की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में, साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे। खेत से लेकर कब तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं।
1: जी, और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला
0: बिल्कुल
1: क्यों गया आखिर, तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ है, ये तो हम कहेंगे।
0: चाय की बात और भारत की बात ना, ऐसा कैसे होगा?
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे, क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी।
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया, और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया, और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया, और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था। ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पे। और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है, और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है, और रहना ही चाहिए था। भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश है उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी प्याली लेकर
1: स्वादिष्ट मिलती है,
0: और वहां घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं, और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो जाए।
1: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में।
1: बिल्कुल, पीते ही हमेशा।
0: हाँ, और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, और फिर हम बैठकर
1: आज तो
0: चाय
1: बनता है,
0: लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें,
1: बिल्कुल।
0: तो भाई उस चाय को कहते
1: आज
0: ना तौहीन
1: चाय
0: हो
1: का
0: जाएगी।
1: सम्मान करना जरूरी है
0: बिल्कुल।
1: भाई।
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की।
1: हाँ, आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया।
0: हाँ तो अब हाँ। समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी जो चाय से करते हैं प्यार।

0: वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा नवा।
1: क्या बात है, क्या बात। और जैसे तुम बता रही थी ना, बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं, जिसमें अदरक, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं। लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं, वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना, वो पीना पसंद करते हैं।
0: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं। भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है। और हाँ, मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी के कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है,
1: चाय के प्याले भी करवा लिए जाते हैं।
0: कप चाय मिल जाने पे।
1: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो। सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
0: ओहो, क्या बात है भाई।
1: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है इनका।
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है, लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है। सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
1: तो वही चलिए, गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के द्वारा।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षिता जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को दो कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती, और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
1: हाँ।
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहां तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको, और सोशल फोबिया जैसे कि सोशल जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है, और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो भी एक तरीके का फोबिया है, और एगोराफोबिया।

0: है वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहां फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, या हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया ऐसा तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
1: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: भी देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया की, मतलब मुझे भी है।

0: कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा तो ये क्यों ऐसा हो रखा है, फिर उसी उसमें लग
1: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं, कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है, बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
0: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहां से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
1: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं, और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है, और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
1: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी,
2: बिल्कुल जाना है, शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है, तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर ही इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा, तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं। और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से, तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनिए।
1: बिल्कुल। और हम सुन लें गाना, और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से
1: येल्लो में
0: इजाजत। हाँ
1: चलिए
0: हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओ, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओ, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुँचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्हीं गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: तो विविध भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगी। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे?
1: पिंक सिटी कहा जाता है, और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है।
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ 2011 से, मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में खासकर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सचिव की बात होती है और सकाव की बात होती है, फेसबुक पे कमेंट पड़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद फिर?
1: जी अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?

0: आते हैं
1: जी। मैडम आज फिल्म का नाम रहेगा सलाटे और इसमें गाने के बोले डक डक वाला ऐसा कुछ गाना है वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा इंटरव्यू सारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं?
1: जी अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपकी कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहे हैं रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है, लेकिन आप रेडियो सुनते हैं ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहलिम जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं।

0: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
1: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
0: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
1: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: उनके लिए मैं ही कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करें, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा दूर रहिए।
1: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
1: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप 10वीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म के नाम है फिर तेरी कहानी याद आई, काले बोले दिल ने सनम की सूरत आंखों में आके दे, मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
1: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है इधर आजकल, तो पक्षी की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्खा लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पड़ जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, ऐसे घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन

0: से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं कामकाज, क्योंकि रेडियो तो ऐसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो कामकाज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानों से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, ड्योल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेकर आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात

0: बता दी है।
1: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
0: मैम आजकल का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेके आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेके अगस्त सब अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
1: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
0: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपनी अपनी।
1: बिल्कुल
0: मैम, यहाँ हमारी ये है कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी जो हमारे कांगड़ा में, हिमाचल में है हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में शादी वगैरह में।
1: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
0: बिल्कुल मैम।
1: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमें बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
1: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: है या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है! तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे
1: बहुत
0: श्रोता
1: ठंडक पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं,
0: हाँ
1: शीतलता देते हैं।
0: जी जी जी हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा और क्या करती हैं
1: इसके अलावा? तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, जो मंच आएगी तो आपने शुरू करा इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल है।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छा हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान?

0: बोल रहा हूँ।
1: नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
0: जी मेहरबानी आप लोगों की,
1: क्योंकि मैं आपको जो आपका नाम है वो बहुत पुराना, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के?
0: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं।
1: जी अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल?
0: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं, और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और हमको अभ्यास भी है, राजस्थान के लोग हैं, हमको गर्मी का अभ्यास है।
1: तो नरोत्तम जी ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
0: बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा पूरी तो अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ, पूरे दिन तो नहीं लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
1: तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
0: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
1: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर।
0: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूँगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है।
1: जी
0: धर्मेंद्र हेमा मालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है, राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार कच्छ, खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा।

0: तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला गुजरात की,
1: जटिल कला है, जटिल कला है जो तो कोई नहीं कर सकता। सीखने में टाइम लग जाता है और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में, जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुसियान है या कोई तस्सर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा। मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं, कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा वो वेट कलर चढ़ता है तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे डाइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा इस तरह से।
0: जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि कादिर जी ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
1: ना मैं करता हूँ, मेरा वाइफ ही करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
0: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं, विविध भारती में आप तो एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहे गीत पत्रों के ऊपर आधारित।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और अब आप बताइए कादिर जी अपनी पसंद का गीत।
1: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है ना खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
0: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम भी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुलिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी।
0: बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
1: हाँ जी अच्छी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मेड़ पे रख के सुनते हैं?
1: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल आना चाहिए, है ना?
1: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है कहीं से भी, हर जगह जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरमाइश का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
0: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
1: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरमाइश सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
0: शाम को
1: माला कार्यक्रम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
0: तो आप लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र आमची मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैं अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी, मेरे को हो गए 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए?
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: ये आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी, मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर, गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी जी जी,
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है लख। हाँ जी
0: हाँ हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी,
0: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ, पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, तो रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, उसको बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है, और वहाँ का खान पान बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार?
1: मैं अकेला ही सुनता बहुत, मैं तो ना जी जब बड़े बड़े रेडियो भी होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सिलोन से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, चुप जाए फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी, बताइए क्या हालचाल है आपके, क्या करते हैं?
1: जी मैम, बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम। जी मैम, मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम, पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम, मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम, ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है?
1: जी जी मैम, ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम, कोल्ड ड्रिंक है जैसे सोफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, बच्चों को भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोफ्टनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोफ्टनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम, यही काम है, गांव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम, मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था SMS के बहाने, BBS के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबले ग्राम सामनाकर तालुका कागल जिला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। सही,
0: क्या हाल चाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हमें करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। वही तो पिछले साल में बंद रहता हो, घर में रहता हो, कार्यक्रम सुनता हो।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसे पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या क्या है, कभी उठता हो, रेडियो सुनता हो, भजन सुनता हो, भजन गाता हो, भजन मंडल है, भजन मंडल में भजन गाता हो।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं, तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा जोती बमाजा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा जोती बमाजा बोलूया चांगे भले, सासन काठी डुले जोतीबाची सासन काठी डुले, सासन काठी डुले जोतीबाची सासन काठी डुले, सासन काठी डुले
0: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैंने तैयार किया लता मंगेशकर SB बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई दिल दीवाना दिल सजना के मानना ये पगला है, समझाने से समझे ना।
0: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का

हाँ हेलो फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं आज के कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोतियो, अज दा इह खास प्रोग्राम गल्लां चों गल दे अंतर्गत सिलसिला हैलो डॉक्टर लैके हाजिर हां जी। मैं खुशप्रीत शेरगिल। प्रोग्राम दे विच असी एक माहिर मेहमान नूं सद्दा दिंदे हां जो कि तुहाडे वल्लों पुछे गए सवालां दे जवाब दिंदे ने। सो सब तों पहलां स्वागत कर लैंदे हां साडे अज दे माहिर मेहमान डॉक्टर गुरसिमरन कौर कोचर जी दा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा साडे अज दे इस खास प्रोग्राम दे विच।
1: थैंक यू खुशप्रीत जी, ते सारे श्रोतियां नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल जी।
0: जी डॉक्टर साहब, सारे स्रोतियां दे बिहाफ ते असीं वी तुहानू बहुत जीआं आ कहने आ, ते तुसीं अपने कीमती समय चो समां कढ के साडे स्रोतियां दे रूबरू होए, इस लई वी तुहाडा इक वार फिर तों असीं धन्नवाद करदे आ। स्रोतियो, तुहाडी जानकारी लई दसना चाहांगे कि अज साडा विशा है जूनोटिक बीमारियां की हुंदियां ने ते इन्हां तों असीं किवें अपना बचाव कर सकदे आ। ते जिहड़े वी स्रोतियां ने इस विशे दे संबंधी कोई भी जानकारी हासिल करनी होवे तां उह साडे स्टूडियो दा नंबर 0164-2240-331 डायल करके जो स्टूडियो नंबर है उसनू डायल करके साडे नाल जुड़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जदों तक कोई स्रोता साडे नाल फोन लाइन से जुड़ते आपां प्रोग्राम दे विच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लैंदे आ जी। डॉक्टर साहब, तुसीं कृपा करके स्रोतियां नूं जानकारी दिओ भी जिवें अज असीं जिहड़ा विशा चुणिया है यह आउंदा जी वन हैल्थ दे हेठां। सो इस करके तुसीं सानूं जानकारी दिओ भी वन हैल्थ दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है यह की है ते किवें इहदे बारे असीं लोकां नूं जागरूक कर सकते हैं, जां इहदे अंतर्गत किहड़ियां-किहड़ियां बीमारियां जां किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां दा सानूं खास तौर ते ध्यान रखण दी जरूरत हुंदी है जी।
1: ओके खुशप्रीत जी, सब तो पहला मैं आकाशवाणी बठिंडा दे डायरेक्टर साहब दा धन्नवाद करना चाहनी हाँ जिन्होंने मैनू सद्दा दिता ते मौका दिता मैनू हैलो डॉक्टर प्रोग्राम दे राही सारे स्रोतियां नू जागरूक करन दा। ते मैं शुरुआत करांगी वन हैल्थ दा। वन हैल्थ, चलो तुसी मेरे तो सवाल पुछया ते मैं इस सवाल दा जवाब तुहानू एक सवाल दे पुछन राही अपना एक्सप्लेन करना चाहनी हाँ, दसना चाहनी हाँ। जे पशु बीमार होंगे तो पशु की समस्या है खुशप्रीत जी?
0: जी बिल्कुल, ये पशु की समस्या नहीं है जी, क्योंकि उन्होंने ध्यान जो असी रख रहे हैं, असी अगर पशु नू पाल रहे हैं तो सानू पशु का ध्यान देने की जरूरत है जी।
1: जे पानी प्रदूषित होवे या हवा वातावरण खराब होवे ते सिर्फ ओदा ही सिर्फ एक एनवायरमेंटल दी प्रॉब्लम हैगी है
0: जी। देखो इहदे विच वी जदों असीं कोई डिबेट देखदे आं तां उहदे विच इही कहा जांदा है कि पानी पलीत नहीं सी, इहनां नूं पलीत कीता गया। ते किहदे द्वारा कीता गया? साडे द्वारा, यानी कि इंसानां द्वारा ही पलीत कीता गया। हुण वी असीं देखदे आं साडे आले दुआले जो पानी दे सोमे ने उहनां नूं कई वारी उहनां दे विच गंदा पानी आ के रल जांदा ते जदों कोई ध्यान नहीं दिंदा, चाहे उह आम लोक होण, चाहे परिवार दे मैंबर होण, चाहे प्रशासन होवे, सारयां दी जिम्मेवारी बनदी है कलैक्टिवली। तां मेरा ख्याल है वी सारे ही असीं जिम्मेवार आं बतौर इंसान।
1: जे मच्छर वज जांदा है तो सिर्फ एक घर प्रभावित होंदा है या पूरा शहर या पूरा देश प्रभावित होंदा
0: जी? मच्छर नू भी बिल्कुल नहीं पता कि मैं डॉक्टर गुरसिमरन कौर कोचर नू कट रहे हां कि मैं खुशप्रीत कौर नू कट रहे हां या फिर मैं एक नू कटिया ते मैं दूजे नू नहीं कटना जी।
1: एग्जैक्टली, तुसी मेरा जवाब

0: अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
1: तुहानू जानकारी दे दईए कि 21 मई दिन वीरवार शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युववाणी दे तहत विषय रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फायदे अते नुकसान। इस विषय ते जानकारी देंगे महाराजा रणजीत सिंह पंजाब स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो कंप्यूटर विभाग दे असिस्टेंट प्रोफेसर मैडम सोनाक्षी सागर, मुलाकाती होंगे नितिश कुमार। सो सुनना जरूर प्रोग्राम युववाणी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी जानकारी दे उत्ते आधारित होवेगा दिन वीरवार शाम 6:30 बजे।
2: सबका फेवरेट
0: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
3: वक्फे तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा सब दा स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा है गल्लां चो गल दे अंतर्गत साडा सिलसिला हैलो डॉक्टर ते अज साडे नाल स्टूडियो विच माहिर मेहमान डॉक्टर गुरसिमरन कौर कोचर जी पहुंचे होए ने जो कि कंसल्टेंट ने वन हैल्थ दे और एम्स हस्पताल बठिंडा विखे अपनियां सेवावां निभा रहे ने। डॉक्टर साहब ने सानू जानकारी दित्ती वी केड़ियां-केड़ियां ज़ूनोटिक बीमारियां हुंदियां जो ओह बीमारियां जो पशुआं दे राहीं मनुखां दे विच हो सकदियां ने। सो हुण असीं इक इक करके बीमारियां बारे डॉक्टर साहब तों जानकारी हासिल करना चाहांगे। डॉक्टर साहब तुसीं साडे स्रोतियां नूं जानकारी दिओ जी, तुसीं नाम लिया सी इक बीमारी दा ब्रूसेलोसिस, तो इस बीमारी बारे थोड़ी जी जानकारी दिओ वी इह बीमारी की हुंदी है जी ते की चिन्ह ते लक्षण हुंदे आ जेकर किसे नूं इह बीमारी हो जावे तां।
4: सब तो पहले मैं गल करूँगी, मैं जिवें कि दस्या सी ब्रुसेलोसिस एक बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज़ हैगी है जिदा छोटा बैक्टीरिया जिदा नाम आपां कहांगे ब्रुसेला। तो आपां डिटेल विच गल करिए तो ब्रुसेला दा आपां ए गां मज्जां गोट्स शीप्स विच पाया जांदा है, जो भी लैक्टेटिंग एनीमल हुंदा है जो भी दुध देंदा है। तो जदों आपां वैटनरी एक्सपेक्ट नाल गल करिए तो जदों मतलब गां मज प्रैगनेंट हुंदियां ने तो 6-7 मंथ विच ना वो अपने आप बच्चा अबॉर्ट कर दिंदियां ने। सब तो पहला वैटनरी गां मज्जां विच सब तो पहला लक्षण पाए जाते, जरूरी नहीं है ब्रुसेला होए, बट आपां जिवें आपां कहने कि मैडिकल टर्म विच कुछ भी आपां पहले बारे च कुछ भी कन्फर्मेटरी नहीं दिंदे अंटिल एंड अनलैस जदों यह कन्फर्म ना हो जाए। तो आप जो स्टार्टिंग विच गल करिए कि 6-7 मंथ विच वो बच्चा अपने आप अबॉर्ट कर देंदी है गां मज। तो हुण आपां दूजे विच गल करिए ह्यूमन विच किवें आंदियां ने जो आपां बच्चा अबॉर्ट कर देंदे, जो आपां वैक्नरियंस आंदे ने आपां वी जो मैं पहले भी दस्या सी तुहानू कि आपां इमोशनल होके आपां मतलब आपां हैल्प करने आ ते आपां बिना ग्लव्स तो राही हैल्प करने आ, जिथे भी जख्म हुंदा है वो ब्लड राही वो बैक्टीरिया अपने अंदर एंटर कर जाता है। तो सब तो पहला ये लक्षण क्यों कि कच्चा दुध पीन नाल जो गां मज जो ब्रुसेला हुंदा है जो बैक्टीरिया हुंदा है जो आपां कच्चा दुध आपां पी लैंदे आ उहदा साइन एंड सिम्पटम्स अपना बैक्टीरिया अपने बॉडी च एंटर करदा है। तो तुहानू सब तो पहला लगेगा कि एक हफ्ता कंटीन्यूअस तुहानू फीवर ते स्वैटिंग होएगा, पसीना आएगा, भुख मार जाएगी, थकावट होएगी, तो अपने हत्थां पैरां दे जोड़ियां विच अपना दर्द शुरू हो जाएगी। तो इहदा सिर्फ हैगा तो सिर्फ नॉर्मल जिहड़े आम तौर पर जिहड़े सारे लक्षण हुंदे ने, बट तुसी जदों डॉक्टर कोल जाओगे तुसी सिर्फ आही दसना हैगा कि सर मेरे घर पशु पालन हैगा ते मैं कच्चा दुध पीता सी, तो ना अपनी हिस्ट्री देनी है। माइट बी इट कैन बी जूनोटिक डिजीज, इट कैन नॉट बी जूनोटिक डिजीज, ए सिर्फ कन्फर्मेटरी टेस्ट ताही मतलब कन्फर्मेटरी टेस्ट हो सकता है थ्रू टेस्टिंग एलाइजा टेस्टिंग के थ्रू ही तुहानू पता लग सकता, बट तुहानू मैं एक आम तौर पर स्टार्टिंग ते लक्षण दस रही हाँ कि तुहानू फीवर होएगा नाल पसीना होएगा भुख मर जाएगी जोड़ियां विच दर्द होएगी हत्थां पैरियां विच दर्द होएगी ते वीकनेस बहुत ज्यादा वीकनेस होएगी
3: जी। डॉक्टर साहब एक स्रोता साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े आपां उहनां दा भी सवाल लै लैने। हैलो स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच, अपना नाम स्रोतियां दे नाल सांझा कर दिओ। हैलो
5: मैडम
3: जी, सत श्री अकाल बाई जी, कौन बोलदे हो?
5: मैडम जी फिरोजपुर तो बोल रहे पिंड साबू
3: जी। बाई जी सवाल पूछ लो जी डॉक्टर साहब तो, की पूछना है?
5: मैडम जी एक दम पिछे ना जान रही है डॉक्टर साहब एड्रेस दो आप दे।
3: हां हां जरूर जी डॉक्टर साहब, वैसे तो दस रहे हैं कोई सवाल पूछना है तुसी?
5: असि सवाल ये पूछना जे भी असि ना पशु रखे ने
3: इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने अपने एक बार दस दिता कि बीमारियां होंदियां ने, हुण असीं उन्हां ते ही गलबात कर रहे हैं। तुसीं कृपा करके रेडियो सैट दे राहीं जवाब सुन लो जी। डॉक्टर साहब तुहाडी गल दा जवाब दे रहे ने। डॉक्टर साहब ये पुछ रहे ने भी कि बीमारियां हो सकदियां ने।

0: एंटर करते, सब दे साइकिल इको तरह सेम हैगे। जेड़ा बैक्टीरिया हैगे वो जख्म दे राही या थुक दे राही लार दे राही जो आप सलाइवा कहने हैं वो एंटर करता है अपने बॉडी विच। तो सब तो वड्डा एदा एग्जाम मतलब सब तो वड्डा दे लक्षण होंदे ने अखां लाल हो जांदियां ने,
1: जी
0: अखां लाल हो जांदियां ने, जॉन्डिस पीलिया जिन्हों आप कहने जॉन्डिस नू पीलिया, पीलिया नाल हुंदा है, बुखार हुंदा है, हेडेक हुंदा है, तो एदा मेन लक्षण आही हैगे ने। तो मैं एक होर एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जिवें आप हुन गर्मी आई लस्सी लीती, लस्सी दा आपा कैन सीधा आपा स्ट्रॉल आई ते पी लिया,
1: जी
0: तुहानू नहीं पता वो लस्सी कित्थे पई सी। आम तौर ते सारे डेयरी प्रैक्टिसेस आम तौर ते आ नॉर्मल हैगे कि जे आपा हैगे तो जीव भी हैगे ने, जीव हैगे ने ते चूहे आ सारे दे मतलब आ अनु आपा अवॉइड नहीं कर सकते जिन्ना मर्जी आपा कर लिए। तो द यूरिन दे विच केड़ा बैक्टीरिया कित्थे, तो हमेशा जदों आपा कहने कैन फैक्ट्री विच जिवें कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री विच ठंडे की फैक्ट्री विच तुहानू आम तौर ते होएगा कि जेड़ा ए चूहा है उत्ते मतलब एक साइकिल हैगी कि वो
1: जी
0: यूरिन करेगा, उन्होंने तो नहीं पता कि कित्थे करना है कित्थे नहीं करना, उत्ते बैक्टीरिया कितने छड़ना है कितने नहीं छड़ना, ओदे थ्रू वो कितने ना कितने बैक्टीरिया रह जाता है आपा उन्हें चकने आ। यूजुअली जड़े बच्चे होंगे ने कि ठंडा ठंडा आपा पीना स्ट्रॉ लाई मुंह लाया तो मुंह नाल पी लिया, वो बैक्टीरिया डायरेक्ट तुसी आप ही इनहेल किया आप ही अपने बॉडी, जे थोड़ी बॉडी दे स्किन दे विच भी कोई भी जख्म नहीं होए। हुण कोई मैनू स्रोता कहेगा कि मैं मेरे तो कोई जख्म नहीं सी फिर भी मैनू लक्षण मिल रहे ने, पर तुसी आ तां नहीं देखिया कि हाइजीन इज द की,
1: जी
0: हर चीज साफ करके पियो, हर चीज तुसी आपां ला लैने कि कित्थों भी आपां पानी पी लैने आए कि कोई भी आपां कैंस कट मुंह ला लैने आ। ते एक उही चीज है कि हैगी तां नाम तां वड्डा लगदा है पर इहदा इलाज बहुत ही छोटा है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक स्रोता साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े हुए ने, पहला आपां उन्हां दा सवाल लैने, इस बीमारी बारे आपां गलबात जारी रखांगे। स्वागत है जी प्रोग्राम च, अपना नाम दस दिओ।
2: हेलो,
1: हां जी, सत श्री अकाल बाई जी, ते डॉक्टर साहब तुहाडी गल सुन रहे हैं, की सवाल है ते अपना नाम भी दस दिओ जी।
2: सवाल है जी मेरा, मैनू मेरे सिर कटे हुए आ,
1: बकरी दे दुध दे नाल सेल वधदे नहीं, पर चलो जे तुहाडे मन दे विच गल आई भी है तां डॉक्टर साहब दस रहे ने भी कच्चा दुध आपां किसे भी पशु दा नहीं पीना, तां फिर बकरी भी पशुआं दे विच ही आउंदी है जी।
2: ठीक है
1: जी, नाम नहीं दस्सिया बाई जी तुसीं अपना।
2: कृष्ण
1: भाई जी, तुसी जेकर सेल कटे हुए ने, डेंगू दा भी चल रहा है जी सीजन, तुसी बेनती है तुहानू कि तुसी डेंगू दा टेस्ट टूस्ट करवाओ, हो सकदा कोई इस तरह की समस्या होवे तो फिर उहदे मुताबक तुहानू दवाई लैण की जरूरत है, क्योंकि जदों ये सीजन चल रहा हुंदा उदों असी बहुत घबराए हुए हुंदे आ, ते जेकर थोड़ा जा भी पैनिक हो जावे तो उहदे नाल होर बीमारी है जिहड़ी साडी कंडीशन है जिहड़ी खराब हो सकदी है। सो बेनती है कि तुसी टेस्ट अपना सरकारी हस्पताल दे विचों इस बीमारी संबंधी भी जरूर करवाओ। डॉक्टर साहब, इन्हां ने जिद्दां पुछिया बई असी बकरी का दुध पीना चाहते हैं क्योंकि इन्हों के सैल कटे हुए, भी एक मिथ है, बहुत बार इतने डॉक्टर साहब हुणी अलग अलग बीमारियों के संबंधित आते हैं, वो दसते हैं जानकारी देंदे हैं कि बकरी का दुध पीने के कदे भी साडे प्लेटलेट्स दे विच कोई वाधा नहीं हुंदा, पर फिर भी यह प्रैक्टिस चलती है। चलो ठीक है, आपां मन लैंदे हां कई बार किसी का विश्वास हुंदा इन्हां गल्लां दे विच, तां इह पुछना चाह रहे सी भी कि उहदा दुध भी सानूं बकरी का दुध भी उबाल के पीने की जरूरत है कि वह कच्चा पी सकते हैं।
0: नहीं जी, बिल्कुल उबाल के पीना, दुध एक है बैक्टीरिया तो उहदे अंदर वाइबल रहिंदे, तुसीं दुध नूं उबाल के पियो सारे बैक्टीरिया वायरस सारे मतलब मर जांदे ने ते खत्म हो जांदे ने, तुसीं प्लीज अपना दुध उबाल के पियो
1: जी। ते डॉक्टर साहब, आपां गल कर रहे सी जी स्क्रब टाइफस नां दी बीमारी दे बारे, तुसीं श्रोतियां नूं जानकारी दे रहे सी भी सानूं हाइजीन मेनटेन करन दी जरूरत है, कोई भी आपां कोई लिफाफे दे विच पैकेट बंद कोई चीज आ रही है जां डब्बे दे विच केन दे विच बंद कोई चीज आ रही है उहनूं आपां डायरेक्टली नहीं पीना, उहनूं आपां सफाई करके फिर पीना। तां मेरा सवाल तुहाडे तों इह बणदा जी हुण पुछणा कि बई असीं कल्ले पानी नाल साफ करिए जां नमक वाले पानी नाल साफ करिए जां कादे नाल साफ करिए, ते उस तो बाद असीं कई बार हुंदा स्ट्रॉ नहीं हुंदी साडे कोले, तां फिर उहदे लई की हल है जी?
0: देखो जी, जिहड़ी लेप्टोस्पाइरोसिस हैगी है, तुसीं जिहड़े आपां कहिंदे कि सारी वेजिटेबल्स नूं तां देखो गर्म पानी नाल ते नमक पा के तुसीं चंगी तरह साफ कर लो, ते जो बाहर हैगे हो तुसीं नहीं कर सकदे ते रनिंग वाटर नाल चंगी तरह उहनूं रगड़ के धो लो, तो उहदे नाल भी तुहाडा बैक्टीरिया उहदे जिहड़ी हैगी है उह घट हो जांदियां ने
1: जी। ते जे आपां स्क्रब टाइफस की गल करिए जी, इस दे विच भी या सारे बैक्टीरिया दे बारे ही सेम?
0: स्क्रब टाइफस तां हैगा जिहड़े आपां घां विच चलदे आ, उह कीड़ा लड़दा उहदे अंदर, उहदे अंदर उह नहीं हैगा, तुसीं आपां कहीए कि कैन इनवॉल्व हैगा कि डायरेक्ट, स्क्रब टाइफस विच कीड़ा लड़दा। ब्रुसेलोसिस विच तुसीं कच्चा दुध नहीं पीना, अध पक्का मीट नहीं खाना, उहदे राहीं उह बैक्टीरिया एंटर करदा। लेप्टोस्पाइरोसिस भी तुसी जिहड़े आपां बार केन्स विच या आपां इदां ही मूंह ला के पी लैने आ, उहदे लई नहीं आपां नहीं करना
1: जी।
0: जिवें तुहानूं मैं दसनी आ कि हुण हड़ आए सी अपने, हड़ां विच बड़ा ही फेमस अपना लेप्टोस्पाइरोसिस सी, आपां भी नंगे पैर तुर रहे सी कि आपां नूं फर्क नहीं पैंदा कि चलो पानी तां हैगा ते उहदे अंदर ही सप्प चूहे वॉर्म सब

सोनाक्षी जी जो कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाब स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी दे विच अपनियां सेवावां निभा रहे ने ते इन्हां दे नाल गलबात करनगे नितेश कुमार ते गलबात दा विशा होवेगा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस दे फायदे अते नुकसान।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पेश है सबका फेवरेट
4: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
5: इस वेले तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान, स्रोतियां दी जुबान, आकाशवाणी FM बठिंडा। FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन AIR ते।
6: जी साथियों नमस्कार, प्रोग्राम युववाणी दे विच मैं नीतीश कुमार ठाकुर सारे श्रोतियों दा निघा स्वागत करदा। ते साथियों अज दे प्रोग्राम युववाणी दे विच साडे आकाशवाणी दे स्टूडियो दे विच मौजूद ने मैडम सोनाक्षी शर्मा जी। मैडम, सब तो पहला तो असीं तुहाडा प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत करदे आं।
7: थैंक यू नीतीश, युववाणी सुनवा सारे श्रोतागण नूं मेरा सति श्री अकाल
6: जी। ते मैडम, अज दे प्रोग्राम युववाणी दे विच ना असीं खास विशा रख्या साडे नौजवान साथियों दे लई AI दे बारे। ते क्यों ना फिर प्रोग्राम दी शुरुआत दे विच वी ना सब तो पहला मैं तुहाडे तों इही सवाल पुछूंगा कि AI की है अते आम लोकां दी जिंदगी दे विच इस दा की प्रभाव पै रहा है, इस दे बारे तुसी विस्तार पूर्वक साडे जिहड़े नौजवान साथी इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं उन्हां नूं दसो।
7: नितीश, AI दा पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
6: जी।
7: इस दा अर्थ हुंदा है, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤਮ ਬੁੱਧੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚ ਸਕਣ, ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ
6: ਜੀ।
7: ਅੱਜ ਕੱਲ AI ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਲਸ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਪ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨਾ।

0: हाँ जी, उस तो अलावा जे कोई व्यक्ति ऑनलाइन पैसे मंगे या फिर इमोशनल प्रेशर पा के मदद मंगे तो बिना जांच किते ट्रस्ट ना करो
1: जी।
0: ठीक है, सब तो महत्वपूर्ण गल है नीतीश कि जे कोई ऑफर या फिर मैसेज बहुत ही वधिया लगे तो पहला उसकी सच्चाई जरूर जांचो कि तुम लग रहा है कि बाई वन गेट टू आ रहा है। कुछ भी अपने जो ऑफर आंदी है लेडीज खास कर ना हमें भी हाँ आप कोई चीज परचेज करनी है जो अपन अच्छा मिल रहा है पहला उसकी जांच करो उसके रिव्यूज पढ़ो। ठीक है, सावधानी और जागरूकता ही ऑनलाइन फ्रॉड तो बचाने का सब तो वधिया तरीका है
1: जी। सोनाक्षी जी, अगला जिहड़ा मेरा सवाल है तुहाडे तो यह है कि सब तो आसान साइबर क्राइम केड़े-केड़े हुंदे ने, इन्हां दे बारे भी ना साडे नौजवान साथियां नूं ते जिहड़े मां प्यो उन्हां दे प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे है उन्हां नूं भी जागरूक करो तुसीं।
0: अजकल इंटरनेट अते मोबाइल दी वरतों बहुत बढ़ गई है जिस करके साइबर क्राइम दे मामले भी लगातार बढ़ जा रहे हैं
1: जी।
0: ठीक है, तो लोगों नूं जागरूक होने की बहुत ही लोड़ है ता जो ऑनलाइन ठगी तो बच सकन। सब तो जिहड़े आम साइबर क्राइम नीतीश ओ उस विच आंदा है ओटीपी फ्रॉड, फेक कॉल्स
1: जी,
0: फिशिंग लिंक्स, सोशल मीडिया अकाउंट नूं हैक करता जांदा है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड अते बैंक फ्रॉड शामिल हैं
1: जी।
0: ठीक है, कई बार स्कैमर्स हुंदे ने ओ की करदे ने अपने आप नूं बैंक ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट इंप्लॉय दस के लोगों नूं कॉल करदे हन
1: बिल्कुल
0: अते ओटीपी या फिर बैंक डिटेल्स मांगदे हन। जिवें ही कोई व्यक्ति जानकारी शेयर करदा है उसके अकाउंट विच पैसे कढ ले जांदे हन
1: जी।
0: फिशिंग मैं उत्थे यूज किया सीगा कि फिशिंग लिंक, फिशिंग की हुंदा है, फिशिंग जो है एक होर आम फ्रॉड है जिस विच फेक लिंक या फिर वैबसाइट राही लोगों के पर्सनल इनफॉरमेशन चोरी किए जाते हैं। यह लिंक जो हुंदे है वो बैंक अपडेट, लॉटरी, फ्री गिफ्ट हो गया जां कहिंदे वी तुहाडे अकाउंट की KYC करनी है तो इस करके वो लिंक भेज देंदे आ, आपां क्लिक करदे आ और वो लिंक दे नाल अपने जो है अकाउंट्स जो है वह उन्हां नाल अटैच हो जांदे ने जिथो वो इजीली अपना बैंक अकाउंट खाली कर देंदे ने
1: जी।
0: ठीक है, सोशल मीडिया हैकिंग भी बहुत वध रही है जदों अपना पासवर्ड स्ट्रांग नहीं हुंदा। ठीक है, अपने जो भी अपलोड करते हैं पिक्चर्स या फिर अपनी वीडियोज वगैरह वो अपना उन्होंने सिक्योरिटी नहीं लगाते तो उस नाल भी वो अपने कई फेक लिंक बना के अपना अकाउंट हैक कर लेंदे ने
1: जी।
0: ठीक है, इन्हां तो बचने लई कुछ महत्वपूर्ण गल्लां दा ध्यान रखना जरूरी है। सब तो पहला अपना OTP, ATM पिन या फिर CVV जो अपने क्रेडिट कार्ड के पिछे दिता गया हुंदा CVV, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रिटर्न करोगे ना अगे अपना नंबर है पिछे दिता हुंदा CVV
1: जी।
0: ये कोड किसी नाल भी शेयर ना करो, किसी नाल भी नहीं। ठीक है, अननोन लिंक थोनू आंदे है या थोनू कोई भी सस्पीशियस मैसेज आंदा है भी क्लिक करो या इस ते आ करो थोनू आ गिफ्ट है थोड़े लिए आह लॉटरी प्राइज निकलिया तो थोड़ा अकाउंट ने नाल क्रेडिट हो जाऊगा, बिल्कुल नहीं करना
1: जी।
0: बिल्कुल भी आपां ए जे लिंक्स ते क्लिक नहीं करना, आपां नूं पता आपां लॉटरी नहीं पाई, आपां नूं पता आपां कोई फ्री गिफ्ट वास्ते कोई भी ऑफर नहीं एक्सेप्ट कीती तो लिंक कित्थों आया, दैट मीनस ओह फ्रॉड है। सो आपां उत्थे ही अपने दिमाग दे विच इक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट्स ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 2-factor ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟਿਡ ਐਪਸ ਦੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਟ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ URL ਹੁੰਦਾ, ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ HTTP। HTTP मतलब वो सिंपल है कोई वैबसाइट, वो सिक्योर नहीं है, जिथे लिखा होगा HTTPS, S मतलब वो सिक्योर साइट है, वो एक वैलिड साइट है, उत्थे आपां नूं कोई खतरा नहीं है। ठीक है, HTTP की हुंदा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
1: जी।
0: ठीक है, ये फुल फॉर्म है, ये जिहड़े बच्चे स्टडी कर रहे हैं उन्होंने पता है, इन्हां नूं बच्चों नूं सिखाने हैं, पर आपां सिर्फ URL देखना है, एड्रैस वैबसाइट का एड्रैस जो है वह शुरू हुंदा इस चीज तो ही हुंदा है कि HTTP अगर S लिखिया दैट मीनस सिक्योर साइट है, आपां उसनूं यूज कर सकते हैं। तुसी देखियो खुद कोई भी जो भी मैनूं सुन रहा है परसन कि कोई भी तुसी सोशल साइट खोलोगे या कोई भी शॉपिंग साइट खोलोगे उसके उत्ते ट्रस्टिड एप्स के उत्ते यह पक्का लिखा होगा, जिस दे उपर नहीं लिखा प्लीज उसनूं तुसी असैस ना करो, यूज ना करो, तुरंत बंद कर दो। बाई चांस आपां खुल भी गई, आपां कोई लिंक खोल भी लिया कि आपां शॉपिंग करनी है, कोई बैग अच्छा लगे, कोई नेल पेंट अच्छी लगी, कोई आपां नूं कुछ भी एनीथिंग आपां नूं अच्छा लगता आपां नूं खोलदे हैं, है ना, प्रोडक्ट दी बहुत ऐड हो रही है
1: बिल्कुल,
0: पर वो खोलन ते पहले चेक करो कि वो HTTPS लिखा होया है कि नहीं लिखा होया
1: जी।
0: ठीक है, दूजी गल पब्लिक वाईफाई ते बैंकिंग या फिर इंपोर्टेंट वर्क करन तो बचो। पब्लिक वाईफाई आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन से वाईफाई की एक्सेस दिता हुआ है, ओ चलो जी ओपन है वाईफाई यूज कर लो, है ना, पासवर्ड नहीं लिखा हुआ। होटल्स जाने हैं वो अपन कहते हैं फ्री वाईफाई सर्विसेज, वो ना यूज करो। ठीक है, इंपोर्टेंट कितने भी आप कहने ना कोई काम करना है उस जगह जाके गाने सुन लो, पर बैंकिंग या कोई भी इंपोर्टेंट काम उस वाईफाई के अंडर तुम ना करो। अजकल यह एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन चुका है, लेकिन कई लोग इसका मिसयूज भी करते हैं।

नमस्कार श्रोतियो, अज दा प्रोग्राम शाम सुहानी लैके हाजिर हां जी। मैं खुशप्रीत शेरगिल। प्रोग्राम दे विच शामिल होण दे लई तुसी साडे स्टूडियो दा नंबर 0164-242-331 डायल करना है। ते चलदे प्रोग्राम च तुसी जुड़ के अपनी पसंद दे पंजाबी, हिंदी, फिल्मी ते गैर फिल्मी गीत सुन सकदे हो। श्रोतियो, स्टूडियो दा नंबर 0164-242-331। सो इस नंबर नूं तुसी करो डायल जदों तक कोई श्रोता साडे नाल फोन लाइन ते जुड़दे ने। प्रोग्राम दे विच आनंद माण लैंदे आ वारिस शाह फिल्म दे विचों लए गए इस गीत दा, जिस नूं आवाजां दित्तियां ने अलका याग्निक ते गुरदास मान ने।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: इस वेले तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1।

0: केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
1: इस वेले तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन AIR ते।
2: जी स्रोतियो स्टूडियो दी कड़ी ते समां 7:10 ते 26 सैकिंट दा हो गया जी ते एक स्रोता होर साडे नाल जुड़े ने बड़ी दूरों जुड़े ने प्रोग्राम दे विच।

0: शामिल होने दे लई तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी।
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते भाई साहब, कित्थों गल कर रहे हो जी? साडे स्रोतियां नूं जानकारी दिओ ते अपना नाम भी दस दिओ जी।
1: जी बिल्कुल, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी प्रेम सिंह जी, गीत दस दिओ जी पहला, फिर अपन गल्लां बातां करांगे।
1: जी फिल्म का नाम है फना और गाने के बोले चांद सिफारिश करता तुम्हारी।
0: जी जरूर सुनावांगे जी। हुण तुसी सानू आए जानकारी दिओ भी एमपी दे विच तुसी रहने हो, उज्जैन दे विच, इत्थे तापमान दा की हाल है, मतलब गर्मी किन्नी क पै रही है जी?
1: जी गर्मी तो यहाँ पर 45 डिग्री के करीबन आज टेम्परेचर था
0: जी,
1: और काफी गर्म तेज हवाएं भी चली।
0: जी
1: जी अभी तो मतलब हम बताओ आपको, खेत में काम कुछ भी नहीं है। लहसुन और गेहूं की फसल हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से लगाई जाती है।
0: जी जी
1: जी, गेहूं को शायद पंजाबी भाषा में कणक बोलते
0: हैं। जी जी जी, बड़ी छेती सीख गए तुसी।
1: हाँ जी
0: ठीक है जी। प्रेम जी मतलब जो तुसी उत्थे, क्योंकि असि ना जो पढ़ते सी किताबां दे विच तां लिखिया आउंदा सी वी भू मध्य रेखा दे नेड़े आ, है ना, मध्य प्रदेश, ते फिर ऐ हुंदा वी ज्यादा गर्मी पैंदी है, तुहानू ऐ महसूस हुंदा जदों कदे होर स्टेट दे विच जाके तुसी देखदे हो, उहदे नालों कोई फर्क महसूस हुंदा तुहानू?
1: जी बिल्कुल होता, जैसे कि कई जगह कम गर्मी होती है और यहाँ एमपी में तो काफी, एमपी के बाद जैसे आपको तो राजस्थान के बॉर्डर पे थोड़ा लगता
0: हाँ,
1: है
0: ना, वो अच्छा ठीक है साइड जीते हो।
1: हाँ तो राजस्थान साइड से मतलब काफी तेज गर्म हवाएं आती है
0: जी, ते फिर रात नूं जिवें हुण मच्छरां दा साडे इत्थे चल रहा है भी डेंगू मलेरिया बहुत ज्यादा, मलेरिया तो चलो घट गए ने केस इन्ने नहीं आउंदे अपने कोले, पर डेंगू दा असीं कहिंदे आ वी इस आ सीजन दे विच होण दे चांस हुंदे आ, वी हरेक नूं कहिंदे बचो, तुहाडे आले पासे फिर इन्नी गर्मी दे विच मच्छर मर जांदा है कि मच्छर उसे नहीं हुंदा है?
1: जी मच्छर तो हमारे यहाँ पे ज्यादा नहीं होते हैं दीदी।
0: जी
1: जैसे आपको बता रहा, साफ सफाई का पूरा एरिया है हमारा
0: जी,
1: क्लीन एवं एकदम साफ सुथरा है, तो मतलब ज्यादा मच्छर पनपते नहीं है।
0: जी जी जी, ते जिन्ना क मेनू याद है तुहाडे उज्जैन दे विच महाकालेश्वर मंदिर भी है जो 12 ज्योतिर्लिंगां दे विचों एक है जी, है ना?
1: जी बिल्कुल, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है महाकालेश्वर बाबा का मंदिर, और यहाँ पे आपको बता रहे ना काफी दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, शिप्रा नदी के किनारे है मंदिर
0: जी,
1: और 2028 में सिंहस्थ का मेला भी लगाया जाएगा यहाँ पे।
0: जी तो फिर उस मेले च बहुत इकट्ठ होएगा।
1: हाँ जी काफी, एक महीने तक।
0: वैसे साल दे विच केड़ा समा हुंदा है जदों लोग ज्यादा आउंदे ने उस मंदिर नूं देखण?
1: जी उस मंदिर को देखने के लिए सावन महीने में काफी भीड़ रहती है
0: जी, वैसे तो मेरे ख्याल भी रूटीन च भी लोग आउंदे ही रहंदे होंगे, मंदिर हमेशा खुला ही हुंदा होएगा, है ना?
1: जी हमेशा खुला रहता है, करीबन आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा दर्शन करने के लिए।
0: जी
1: प्रेम जी रहती है वहाँ पे।
0: जी प्रेम जी बहुत वधिया जानकारी तुसी दित्ती मैनू ना, मैं वैसे एक बार आ चुकी हूं मंदिर के दर्शन कर चुकी हूं, पर तुसी मैनू दोबारा मेरी यादां ताजा करा दित्ती, और बिल्कुल सही कहा तुसी भी 1.5 घंटा लगता है, सो प्रोग्राम च तुसी शामिल होए इन्नी दूर तो, प्रोग्राम च शामिल होने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद है जी।
1: जी थैंक यू सो मच।
0: जी श्रोतियों आप बाई जी की पसंद से सुन लेने प्रोग्राम दे विच अगला गीत, ते तुसी जेकर प्रोग्राम च जुड़ना चाहुंदे हो तां 0464-242-3031 नंबर डायल करके जुड़ सकते हो।

తీరుది

0: वेले तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते।
1: जी स्रोतियो स्टूडियो दी घड़ी ते समा 7:52 ते 50 सेकिंट दा ते इक होर स्रोता साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ गए ने जी। बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम शाम सुहानी च।
2: गर्मी
1: का की हाल चाल है?
2: गर्मी का जी बहुत ज्यादा ठंड हो गई है ना।
1: चलो ठीक है बाई जी, तुसी प्रोग्राम च शामिल होए, तुहाडा धन्नवाद है जी।
2: धन्नवाद।

0: सबदंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
3: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
3: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
3: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
3: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
3: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
3: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
3: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
3: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
3: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
3: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
3: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: जी,
3: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
2: जी,
3: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
2: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
3: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच

0: छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊंचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

0: एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
1: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
0: दादी माँ एक हिरन।
1: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक

0: एक हिरन, लंबी लंबी सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन।
1: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू, तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
5: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
6: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
7: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
6: हाँ,
7: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
6: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
7: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
6: हाँ।
8: अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़।
6: इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
7: बिल्कुल सही कहा अटकू।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।

0: sekor.
1: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
2: अच्छा चल अक्कू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
3: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
4: रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
2: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
3: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
2: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
3: वो उसे काटने लगे।
1: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा ठीक है
2: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
3: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
4: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
2: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
3: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया फल सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
6: अरे वाह अटकू मटकू,
3: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
5: पेड़ हमारे
7: दोस्त हैं।
5: जीवन में हरियाली लाओ,
7: पेड़ लगाओ,
8: पेड़ लगाओ।
9: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
10: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार। उमंग।

0: तेरे बाजू सानू अड़िए पल पल जाते सारा, तेरे बाजू सानू अड़िए पल पल जाते सारा, सुना सुना लगदा सानू दिल दा तस गारा, सुना सुना लगदा सानू दिल दा तस गारा, माने सानू डांग दिया नी नाग जुल्फ दा ताला, हुण कड़ा जूंगा लौंग बुरदिया वाला, हुण कड़ा जूंगा लौंग बुरदिया वाला,
1: मछली पानी के नापे लौंग लगा मित्रा, मछली पानी के नापे।
2: इस वेले तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा। FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन AIR ते।
3: जी स्रोतियों, अगला सुनेहा साडे कोले पहुंचिया जी गिदड़वाहा तों। लिखण वाले ने जी मनजीत तनेजा, राम गोपाल तनेजा, प्रवीण तनेजा, मनोज तनेजा, सीमा तनेजा, पायल, अर्चना, स्नेह दिल, हिनाशा ते कहरवी। अगला सुनेहा साडे कोले धन्नवाद दे लई पहुंचिया जी। वीर जी, इस दी जरूरत नहीं है जी, क्योंकि एक बार सुनेहा तुहाडा जदों शामिल हो गया साडा फर्ज़ है। अबोहर तों सुखदेव कुमार प्रजापति हुणा ने, रूपा देवी प्रजापति हुणा ने सानू सुनेहा भेजिया जी। ते अगला सुनेहा साडे कोले पहुंचिया जी कनेरा महला पटियाला तों, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करन, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता हुणा दा।
4: ਨੀ ਕੋਂਡੇ ਦਿਲ ਕੋਲੇ ਹਾਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਈ ਆਪ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਦੰਦਾ ਸਾਗ ਛਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਕੋਂਡੇ ਦਿਲ ਕੋਲੇ ਹਾਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਈ ਆਪ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਦੰਦਾ

0: पांच पानियां देगी।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी पंज पाणियां दे गीत एफ एम बैंड 101 मेगाहर्ट्ज़ ते अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी एफ एम बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी ते समा रात दे 8:44 ते 30 सैकेंड हो रहे ने। ठीक 8:45 ते तुसी सुनोगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन समाचार संध्या ते रात 9 बजे तुसी सुनोगे अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन न्यूज़ @9 आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण

0: समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
4: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9।
7: The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said

फिल्म वक्त से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी, जैसे हर पल नई और फिर भी वही, हाँ वही जिंदगी, जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है, कोई हसरत भी है, पास आना भी है, दूर जाना भी है, और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है, ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है, और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
1: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही उम्र का मोहताज होता है, प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई।

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।
2: Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly, coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, them gonna pass the test.
0: ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंग।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की। कबीर खान निर्देशित एक

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थी रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्रे।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।

हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

या गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। गली गली अब यही अफसाना हो गया, छुप छुप के मिलना भी पुराना हो गया, नजरें क्या मिली शहर में चर्चा छा गया, लैला मजनू का इश्क अब सबके लबों पे आ गया। आज कर...

आज आ की रात ने बाहें खोल रखी हैं, मेरे लफ्जों में तेरे लिए नमी घोल रखी है, तेरी एक झलक को तरसती हैं ये निगाहें, जरा करीब आकर तो देख, मैंने मोहब्बत दिल में सजा रखी है।

नजरों से यूं दिल चुरा लेने का हुनर कहां से पाया, बिना लफ्जों के सब कह जाने का ये फन कहां से आया। हम तो समझते थे खामोशी बस खामोशी होती है, पर तूने इशारों इशारों में दिल जीतना सिखाया।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। अजनबी थे, कोई पहचान भी नहीं थी दरमियां। एक ही मुलाकात में लगा जैसे मिट गई हो दूरियां। तुझसे मिलकर यूं लगा जैसे अपना ही कोई मिल गया। भीड़ में चलते चलते अचानक हम सफर ने जैसे हाथ हो थाम लिया।

पलकें काजल से जब बोझिल सी हो जाती हैं, मेरे दिल की धड़कनें भी धीमी सी हो जाती हैं, माथे की बिंदिया जब चांद को छू कर आती है, तेरे हर सिंगार पर मेरी नजर ठहर जाती है।

0: उसकी मुस्कान से रोशन होती है मेरी सुबह, उसकी पलकों के बंद होते ही होती है मेरी शब। सामने वाली खिड़की में तो अक्सर नजर आती है, पर न जाने मेरे सामने वो मोहतरमा आएंगी कब।
1: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।

বৈশাই তু দিশা কান্দ তাই সর আমার মিও দো বৈশাই তু দিশ চর কান্দ।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।